खुशी छूना सबकी क्षमा फकर की छाया गुना चार कितरा सिकंदो है प्लासी वछी रहा से नो नो नो